0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
1: कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय दिलीप एक्का।
0: पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है।

मरी हुई मक्खियां सुगंधित द्रव्य बिगाड़ती हैं, उसी प्रकार थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती हैं। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के प्रथम पद में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस अध्याय का मुख्य संदेश समझदारी और मूर्खता के बीच एक व्यावहारिक अंतर दर्शाना है, जो दिखाता है कि कैसे थोड़ी सी मूर्खता जिंदगी भर की समझदारी को बर्बाद कर सकती है। उपदेशक छोटी छोटी सूक्तियों का इस्तेमाल कर समझाता है कि समझदारी से पूर्ण चुनाव, सोच समझकर कही गई बातें और सही तैयारी से जिंदगी आसान हो जाती है, जबकि मूर्ख लोग आलस और लापरवाही भरी बातों से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। 10वें अध्याय में थोड़ी सी मूर्खता की नुकसान पहुंचाने वाली ताकत, तैयारी की अहमियत और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की जरूरत पर बल दिया गया है। यह अध्याय प्रज्ञा, बुद्धि और समझदारी के शांत एवं प्रायः नजरअंदाज किए जाने वाले लाभों और मूर्खता के विनाशकारी स्वभाव के बीच अंतर दर्शाता है। इस अध्याय के प्रथम पद में ही उपदेशक स्मरण दिला देता है कि जिस प्रकार मरी हुई मक्खियां सुगंधित द्रव्य बिगाड़ती हैं, उसी प्रकार थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती हैं। इस पद में सुलेमान ने कहावतों का एक जाना पहचाना तरीका अपनाया है और एक स्पष्ट एवं जानी पहचानी बात कही है कि मरी हुई मक्खियां एक अच्छे से मरहम को खराब कर देती हैं और उसमें बदबू पैदा कर देती हैं। यह पिछले अध्याय के अंत में बताए गए सत्य की प्रतीकात्मक पुष्टि है कि एक पापी बहुत सारी अच्छाइयों को नष्ट कर देता है। जैसे छोटी छोटी मरी हुई मक्खियां एक बढ़िया मरहम को खराब कर देती हैं, वैसे ही मनुष्य की थोड़ी सी मूर्खता किसी समझदार और सम्मानजनक मनुष्य की इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है। थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती है। इस पद के द्वारा उपदेशक स्मरण दिलाता है कि छोटी से छोटी बातों के भी परिणाम होते हैं, इसलिए व्यक्ति ध्यानपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे और ईश नियमों का अनुपालन करते हुए अपना जीवन यापन करे।

0: था।
1: आगे उपदेशक इस अध्याय के दूसरे और तीसरे पदों में भी मूर्ख और बुद्धिमान के बीच अंतर स्पष्ट करता है। कहता है, बुद्धिमान का हृदय भलाई की ओर झुकता है और मूर्ख का हृदय बुराई की ओर। मार्ग पर चलने वाले मूर्ख को बुद्धि नहीं सूझती, वह सबको यह दिखा देता है कि वह कितना मूर्ख है। श्रोताओ, बाइबल धर्म ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद में बुद्धिमान का हृदय भलाई की ओर झुकता है और मूर्ख का हृदय बुराई की ओर को अ वाइज मैन्स हार्ट इज एट हिज राइट हैंड बट ए फूल्स हार्ट एट हिज लेफ्ट अनुदित किया गया है। लेखक कहता है कि समझदार व्यक्ति का हृदय उसके दाहिने हाथ में होता है, जबकि मूर्ख बेवकूफ का दिल उसके बाएं हाथ में, क्योंकि दाहिने हाथ को शक्ति, हुनर और अनुग्रह का हिस्सा माना जाता था। इसलिए दाहिना समझदार की शक्ति माना जाता है। यह बात मूर्ख व्यक्ति के लिए सच नहीं होती जिसका हृदय उसके बाएं हाथ में होता है। वस्तुतः दायां एक और मजबूत, सुदृढ़ और भले लोगों का प्रतीक है, जबकि बाएं को स्वाभाविक रूप से कमजोर और बुरे लोगों का संकेत मान लिया गया है। लैटिन शब्द सिनिस्टर का अर्थ भी बायां ही है। उपदेशक कहता है कि यदि व्यक्ति बुद्धि और विवेक से काम लेगा तो उसका हृदय हमेशा भलाई की ओर झुकेगा, जबकि यदि वह बेवकूफी करता रहेगा तो उसका हृदय भी बुराई की ओर झुकेगा। बुद्धिमानी और मूर्खता के बीच अंतर दर्शाकर उपदेशक ने यह कहना चाहा है कि मनुष्य का आंतरिक स्वभाव उसे सुरक्षा या बर्बादी की ओर ले जाता है। समझदारी भरी सोच स्वाभाविक रूप से लाभदायक, हितैषी और सुरक्षित विकल्पों की ओर ले जाती है, जबकि मूर्खता से भरा व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को और खुद की खामियों को खुलकर सबके समक्ष रख देता है। एक तरह उसमें मूलभूत व्यवहारिक ज्ञान या यूं कहें सामान्य ज्ञान की कमी होती है और वह मूर्खता को सबके समक्ष प्रकट कर अपना ही अहित कर लेता है। आगे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 4थे पद में उपदेशक सुलेमान एक व्यावहारिक सी बात बताता हुआ कहता है, जब शासक तुम पर अप्रसन्न हो तो अपना काम मत छोड़ो, क्योंकि धैर्य बहुत सी गलतियों से बचाता है। श्रोताओ, इस पद का मुख्य संदेश यही है कि जब आप किसी शासक, मालिक या नियोजक के साथ परेशानी में हों तो घबराने या नाराज होने से बेहतर है कि आप खुद पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध को जाहिर न होने दें और शांत रहें, क्योंकि धैर्यपूर्वक शांत रहने से किसी बुरे झगड़े को और बिगड़ने से रोका जा सकता है। उपदेशक का विचार यह प्रतीत होता है कि मुश्किल हालातों में भी अपने पद या अपने काम का परित्याग न करें, अपने पद के प्रति वफादार रहें और पाओगे कि समझौता बड़े गुनाहों को भी शांत कर देता है। वस्तुतः श्रोताओ, यहां उपदेशक हमें याद दिलाना चाहता था कि इस जीवन में सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ न्यायपूर्ण नहीं है। बेवकूफ और मूर्ख लोगों को बड़े नेतृत्व वाले पदों पर आसीन कर दिया जाता है और चाहे वे जो भी करें, जितनी भी गलतियां किया करें, उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है, जबकि ईमानदार, कर्मठ और प्रज्ञावान एवं समझदार लोगों को नीचा दिखाया जाता है। किंतु अपनी प्रज्ञा और विवेक का इस्तेमाल कर व्यक्ति इस अन्याय के आगे झुके नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करे। आगे इसी विचार को जारी रखते हुए उपदेशक 5 से लेकर 7 तक के पदों में कहता है, मैंने पृथ्वी पर एक बुराई देखी है, एक ऐसी गलती जिसे शासक किया करते हैं। मूर्खों की नियुक्ति बड़े बड़े पदों पर होती है और धनियों की छोटे छोटे पदों पर। मैंने दासों को घोड़ों पर यात्रा करते और शासकों को दासों जैसा पैदल चलते देखा है। श्रोताओ, अपने जीवन में भी अपने कार्यस्थलों पर हमने इस बात का अनुभव किया है कि मूर्ख और बेवकूफ या नाकाबिल लोगों को ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है, जबकि बुद्धि सम्मत, बुद्धिमान, समझदार, काबिल और योग्य लोगों को नीचे के पद दिए जाते हैं। संभवतः इसलिए कि मूर्ख को किसी की सिफारिश पर रखा जाता है, जबकि प्रज्ञावान और विवेकी की सिफारिश करने के लिए कोई नहीं होता। दुर्भाग्यवश हमारी गलती के कारण नहीं, अपितु यह खराब नेतृत्व की वजह से ऐसा होता है। दासों का घोड़ों पर सवार होना और राजकुमारों का पैदल चलना, यह दर्शाता है कि दुनिया का संतुलन ही बिगड़ गया है। इन शब्दों के द्वारा उपदेशक ने हम सबको अन्याय के विरुद्ध सावधान करना चाहा है। हम सदैव सत्य और न्याय के रास्ते पर चलें।

आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापलियो चौदहवें विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुमारी माता मरियम का स्वर्गरोहण महोत्सव कस्तल गंदोल्फो में मनाएंगे। वे कस्तल गंदोल्फो संत थॉमस के विला नोवा पल्ली में स्वर्गरोहण का समारोही मिस्सा बलिदान अर्पित करेंगे, जैसे कि उन्होंने विगत वर्ष किया था। मिस्सा बलिदान के उपरांत संत पापा विश्वासियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ करेंगे। संत पापा लियो कस्तल गंदोल्फो के अपने परम धर्माध्यक्ष निवास 12 अगस्त को ही लौट गए। वे वहां आगामी मंगलवार 18 अगस्त तक रहेंगे। संत पापलियो चौदहवें ने परम धर्म पीठीय ऐतिहासिक विज्ञान समिति हेतु 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की। 3 नए सदस्य इस प्रकार हैं: इतिहासकार उम्बेर्तो लोंगो, जो रोम इटालियन हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट फॉर द मिडल एज के संचालक हैं; फ्रांचेस्को चेसारियो वर्सेस्टार के अजम्पशन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जो सेवा निर्वित हैं, और अन्ना बारंस्का जो पोलैंड में जॉन पॉल द्वितीय कैथोलिक महाविद्यालय के ह्यूमैनिटीज संकाय से जुड़ी हुई प्राध्यापिका हैं। परम धर्मपीठ ऐतिहासिक विज्ञान समिति की स्थापना 1954 में संत पीयूष 12वें के द्वारा की गई थी, जो 18 अगस्त 1883 को प्रेरितिक पत्र सापेनुमेरो कासिदेरांतेस के जरिए संत पापालियो 13वें द्वारा स्थापित ऐतिहासिक अध्ययन हेतु गठित कार्डिनल कमीशन की परंपरा को आगे बढ़ाती है। समिति के कार्य की विशेषता कलिस्स के संग्रहालय विरासत, खासकर वैटिकन संग्रहालय पर निरंतर ध्यान देना है। इस संदर्भ में संत पापाओं के द्वारा कई अपीलें की गई हैं कि वे वैटिकन परम धर्म पीठीय संग्रहालय की बेहतर और उचित देख रेख हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति करें। इस समिति के चेयरमैन येसु समाजी पुरोहित मारेक इगलोट हैं, जबकि समिति के सचिव पियर अंतोनियो पियाती हैं। पेरू में संत पापा लियो चौदहवें की प्रेरितिक यात्रा के पूर्व कार्डिनल कार्लो कास्तिल्लो ने वैटिकन रेडियो को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि यह पेरू के विश्वासियों के संग संत पापा की निकटता को व्यक्त करता है, जो देश की चुनौतियों के मध्य पेरू की ख्रिस्तीय प्रजा के लिए एकता, शांति और भ्रातृत्व के भाव को प्रोत्साहित करेगा। संत पापा लियो 11 से 17 नवंबर को दक्षिणी अमेरिका की प्रेरितिक यात्रा के दौरान 3 देशों पेरू, उरुग्वाय और अर्जेंटीना का दौरा करेंगे। अपने इस यात्रा के दौरान संत पापा लियो उन 4 शहरों लीमा, चिकलायो, कुस्को और पुकालापा का दौरा करेंगे, जहां उन्होंने प्रेरित और धर्माध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। वैटिकन रेडियो को दिए गए अपने साक्षात्कार में लीमा के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल कार्लो कास्तिल्लो ने पेरू वासियों की ओर से अपनी अपार खुशी जाहिर करते हुए कहा कि संत पापा लियो का उन स्थानों में लौट कर आना जहां उन्होंने एक प्रेरित के रूप में अपनी सेवाएं दी, पेरू के लोगों के हृदय को प्रेम से भर देगा। उन्होंने कहा, लीमा के महाधर्माध्यक्ष स्वरूप मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि हम सभी बेसब्री से संत पापा के आने का इंतजार करते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पेरू एक ऐसा देश है जहाँ कैथोलिक परंपरा बहुत मजबूत है और संत पापा का स्वागत लोगों के द्वारा, पेरू की पूरी आबादी के द्वारा एक सच्चे मित्र स्वरूप किया जाएगा। कार्डिनल कास्तिल्लो ने कहा, यह खबर न केवल हमें अपार खुशी से भरती है, बल्कि हमें अपने विश्वास में बने रहने को मजबूती प्रदान करती है, जिससे हम उनका स्वागत कर सकें और अपने ख्रिस्तीय अनुभव को नई गति दे सकें। उधर आगामी 15 अगस्त को करुणा के कार्य में संलग्न संत इजिदियो समुदाय के द्वारा विभिन्न तबके के लोगों के लिए कई समारोहों का आयोजन किया जाएगा। संत इजिदियो समुदाय ने फेरागोस्तो के लिए अपने कार्यों की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिनमें अकेलेपन और असहनीय गर्मी की मार झेल रहे लोगों के संग गरीबों और सबसे कमजोर

खाना भी बनाएंगे और परोसेंगे, जिनमें कुछ अफगान भी शामिल हैं, जो आज से ठीक 5 साल पहले 15 अगस्त 2021 को काबुल से पलायन किया था। एकता और मिलन की पार्टियां, दोपहर का भोजन और दूसरे अन्य एकता के कार्यक्रम केवल रोम में ही नहीं बल्कि जेनेवा, मिलान, पादुआ, नेपल्स और इटली के दूसरे शहरों में भी आयोजित किए जाएंगे। उधर एशिया पैसिफिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष रैन पी जेमिनेज ने 10 अगस्त को गहरी समुद्री खनन के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, हम गहरे समुद्री खनन से जुड़े फैसलों की जिम्मेदारी लेने वाले सभी लोगों को सम्मान के साथ प्रोत्साहन देते हैं कि वे समझदारी, पारदर्शिता, विनम्रता और जनहित का ख्याल रखते हुए अपने कार्यों में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक घटनाएं हमें सिखलाती हैं कि जब विज्ञान उन कामों के नतीजों के बारे में अनिश्चित रहता है जिनसे गंभीर या ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, तो समझदारी हमें विनम्रता, समझदारी और प्रार्थना में आगे बढ़ने का आह्वान करती है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
1: कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय दिलीप एक्का।
0: पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है।

मरी हुई मक्खियां सुगंधित द्रव्य बिगाड़ती हैं, उसी प्रकार थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती हैं। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के प्रथम पद में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस अध्याय का मुख्य संदेश समझदारी और मूर्खता के बीच एक व्यावहारिक अंतर दर्शाना है, जो दिखाता है कि कैसे थोड़ी सी मूर्खता जिंदगी भर की समझदारी को बर्बाद कर सकती है। उपदेशक छोटी छोटी सूक्तियों का इस्तेमाल कर समझाता है कि समझदारी से पूर्ण चुनाव, सोच समझकर कही गई बातें और सही तैयारी से जिंदगी आसान हो जाती है, जबकि मूर्ख लोग आलस और लापरवाही भरी बातों से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। 10वें अध्याय में थोड़ी सी मूर्खता की नुकसान पहुंचाने वाली ताकत, तैयारी की अहमियत और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की जरूरत पर बल दिया गया है। यह अध्याय प्रज्ञा, बुद्धि और समझदारी के शांत एवं प्रायः नजरअंदाज किए जाने वाले लाभों और मूर्खता के विनाशकारी स्वभाव के बीच अंतर दर्शाता है। इस अध्याय के प्रथम पद में ही उपदेशक स्मरण दिला देता है कि जिस प्रकार मरी हुई मक्खियां सुगंधित द्रव्य बिगाड़ती हैं, उसी प्रकार थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती हैं। इस पद में सुलेमान ने कहावतों का एक जाना पहचाना तरीका अपनाया है और एक स्पष्ट एवं जानी पहचानी बात कही है कि मरी हुई मक्खियां एक अच्छे से मरहम को खराब कर देती हैं और उसमें बदबू पैदा कर देती हैं। यह पिछले अध्याय के अंत में बताए गए सत्य की प्रतीकात्मक पुष्टि है कि एक पापी बहुत सारी अच्छाइयों को नष्ट कर देता है। जैसे छोटी छोटी मरी हुई मक्खियां एक बढ़िया मरहम को खराब कर देती हैं, वैसे ही मनुष्य की थोड़ी सी मूर्खता किसी समझदार और सम्मानजनक मनुष्य की इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है। थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती है। इस पद के द्वारा उपदेशक स्मरण दिलाता है कि छोटी से छोटी बातों के भी परिणाम होते हैं, इसलिए व्यक्ति ध्यानपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे और ईश नियमों का अनुपालन करते हुए अपना जीवन यापन करे।

आगे उपदेशक इस अध्याय के दूसरे और तीसरे पदों में भी मूर्ख और बुद्धिमान के बीच अंतर स्पष्ट करता है। कहता है, बुद्धिमान का हृदय भलाई की ओर झुकता है और मूर्ख का हृदय बुराई की ओर। मार्ग पर चलने वाले मूर्ख को बुद्धि नहीं सूझती, वह सबको यह दिखा देता है कि वह कितना मूर्ख है। श्रोताओ, बाइबल धर्म ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद में बुद्धिमान का हृदय भलाई की ओर झुकता है और मूर्ख का हृदय बुराई की ओर को अ वाइज मैन्स हार्ट इज एट हिज राइट हैंड बट ए फूल्स हार्ट एट हिज लेफ्ट अनुदित किया गया है। लेखक कहता है कि समझदार व्यक्ति का हृदय उसके दाहिने हाथ में होता है, जबकि मूर्ख बेवकूफ का दिल उसके बाएं हाथ में, क्योंकि दाहिने हाथ को शक्ति, हुनर और अनुग्रह का हिस्सा माना जाता था, इसलिए दाहिना समझदार की शक्ति माना जाता है। यह बात मूर्ख व्यक्ति के लिए सच नहीं होती जिसका हृदय उसके बाएं हाथ में होता है। वस्तुतः दायां एक और मजबूत, सुदृढ़ और भले लोगों का प्रतीक है, जबकि बाएं को स्वाभाविक रूप से कमजोर और बुरे लोगों का संकेत मान दिया गया है। लैटिन शब्द सिनिस्टर का अर्थ भी बायां ही है। उपदेशक कहता है कि यदि व्यक्ति बुद्धि और विवेक से काम लेगा तो उसका हृदय हमेशा भलाई की ओर झुकेगा, जबकि यदि वह बेवकूफी करता रहेगा तो उसका हृदय भी बुराई की ओर झुकेगा। बुद्धिमानी और मूर्खता के बीच अंतर दर्शाकर उपदेशक ने यह कहना चाहा है कि मनुष्य का आंतरिक स्वभाव उसे सुरक्षा या बर्बादी की ओर ले जाता है। समझदारी भरी सोच स्वाभाविक रूप से लाभदायक, हितैषी और सुरक्षित विकल्पों की ओर ले जाती है, जबकि मूर्खता से भरा व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को और खुद की खामियों को खुलकर सबके समक्ष रख देता है। एक तरह उसमें मूलभूत व्यवहारिक ज्ञान या यूं कहें सामान्य ज्ञान की कमी होती है और वह मूर्खता को सबके समक्ष प्रकट कर अपना ही अहित कर लेता है। आगे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 4थे पद में उपदेशक सुलेमान एक व्यावहारिक सी बात बताता हुआ कहता है, जब शासक तुम पर अप्रसन्न हो तो अपना काम मत छोड़ो, क्योंकि धैर्य बहुत सी गलतियों से बचाता है। श्रोताओ, इस पद का मुख्य संदेश यही है कि जब आप किसी शासक, मालिक या नियोजक के साथ परेशानी में हों तो घबराने या नाराज होने से बेहतर है कि आप खुद पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध को जाहिर न होने दें और शांत रहें, क्योंकि धैर्यपूर्वक शांत रहने से किसी बुरे झगड़े को और बिगड़ने से रोका जा सकता है। उपदेशक का विचार यह प्रतीत होता है कि मुश्किल हालातों में भी अपने पद या अपने काम का परित्याग न करें, अपने पद के प्रति वफादार रहें और पाओगे कि समझौता बड़े गुनाहों को भी शांत कर देता है। वस्तुतः श्रोताओ, यहां उपदेशक हमें याद दिलाना चाहता था कि इस जीवन में सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ न्यायपूर्ण नहीं है। बेवकूफ और मूर्ख लोगों को बड़े नेतृत्व वाले पदों पर आसीन कर दिया जाता है और चाहे वे जो भी करें, जितनी भी गलतियां किया करें, उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है, जबकि ईमानदार, कर्मठ और प्रज्ञावान एवं समझदार लोगों को नीचा दिखाया जाता है। किंतु अपनी प्रज्ञा और विवेक का इस्तेमाल कर व्यक्ति इस अन्याय के आगे झुके नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करे। आगे इसी विचार को जारी रखते हुए उपदेशक 5 से लेकर 7 तक के पदों में कहता है, मैंने पृथ्वी पर एक बुराई देखी है, एक ऐसी गलती जिसे शासक किया करते हैं। मूर्खों की नियुक्ति बड़े बड़े पदों पर होती है और धनियों की छोटे छोटे पदों पर। मैंने दासों को घोड़ों पर यात्रा करते और शासकों को दासों जैसा पैदल चलते देखा है। श्रोताओ, अपने जीवन में भी अपने कार्यस्थलों पर हमने इस बात का अनुभव किया है कि मूर्ख और बेवकूफ या नाकाबिल लोगों को ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है, जबकि बुद्धि सम्मत, बुद्धिमान, समझदार, काबिल और योग्य लोगों को नीचे के पद दिए जाते हैं।
संभवतः इसलिए कि मूर्ख को किसी की सिफारिश पर रखा जाता है, जबकि प्रज्ञावान और विवेकी की सिफारिश करने के लिए कोई नहीं होता। दुर्भाग्यवश हमारी गलती के कारण नहीं, अपितु यह खराब नेतृत्व की वजह से ऐसा होता है। दासों का घोड़ों पर सवार होना और राजकुमारों का पैदल चलना, यह दर्शाता है कि दुनिया का संतुलन ही बिगड़ गया है। इन शब्दों के द्वारा उपदेशक ने हम सबको अन्याय के विरुद्ध सावधान करना चाहा है। हम सदैव सत्य और न्याय के रास्ते पर चलें।

आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापलियो 14वें विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुमारी माता मरियम का स्वर्गरोहण महोत्सव कस्तल गंदोल्फो में मनाएंगे। वे कस्तल गंदोल्फो संत थॉमस के विला नोवा पल्ली में स्वर्गरोहण का समारोही मिस्सा बलिदान अर्पित करेंगे, जैसे कि उन्होंने विगत वर्ष किया था। मिस्सा बलिदान के उपरांत संत पापा विश्वासियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ करेंगे। संत पापा लियो कस्तल गंदोल्फो के अपने परम धर्माध्यक्ष निवास 12 अगस्त को ही लौट गए। वे वहां आगामी मंगलवार 18 अगस्त तक रहेंगे। संत पापलियो 14वें ने परम धर्म पीठीय ऐतिहासिक विज्ञान समिति हेतु 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की। 3 नए सदस्य इस प्रकार हैं: इतिहासकार उम्बेर्तो लोंगो, जो रोम इटालियन हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट फॉर द मिडल एज के संचालक हैं; फ्रांचेस्को चेसारियो वर्सेस्टार के अजम्पशन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, जो सेवा निर्वित हैं; और अन्ना बारंस्का, जो पोलैंड में जॉन पॉल द्वितीय कैथोलिक महाविद्यालय के ह्यूमैनिटीज संकाय से जुड़ी हुई प्राध्यापिका हैं। परम धर्म पीठ ऐतिहासिक विज्ञान समिति की स्थापना 1954 में संत पीयूष 12वें के द्वारा की गई थी, जो 18 अगस्त 1883 को प्रेरितिक पत्र सापेनुमेरो कासिदेरांथेस के जरिए संत पापालियो 13वें द्वारा स्थापित ऐतिहासिक अध्ययन हेतु गठित कार्डिनल कमीशन की परंपरा को आगे बढ़ाती है। समिति के कार्य की विशेषता कलिस्सा के संग्रहालय विरासत, खासकर वैटिकन संग्रहालय पर निरंतर ध्यान देना है। इस संदर्भ में संत पापाओं के द्वारा कई अपीलें की गई हैं कि वे वैटिकन परम धर्म पीठीय संग्रहालय की बेहतर और उचित देख रेख हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति करें। इस समिति के चेयरमैन यीशु सामाजी पुरोहित मारिक इगालोट हैं, जबकि समिति के सचिव पियर अंतोनियो पियाती हैं। पेरू में संत पापा लियो 14वें की प्रेरितिक यात्रा के पूर्व कार्डिनल कार्लो कास्तिल्लो ने वैटिकन रेडियो को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि यह पेरू के विश्वासियों के संग संत पापा की निकटता को व्यक्त करता है, जो देश की चुनौतियों के मध्य पेरू की ख्रिस्तीय प्रजा के लिए एकता, शांति और भ्रातृत्व के भाव को प्रोत्साहित करेगा। संत पापा लियो 11 से 17 नवंबर को दक्षिणी अमेरिका की प्रेरितिक यात्रा के दौरान 3 देशों पेरू, उरुग्वे और अर्जेंटीना का दौरा करेंगे। अपने इस यात्रा के दौरान संत पापा लियो उन 4 शहरों लीमा, चिकलायो, कुस्को और पुकालापा का दौरा करेंगे, जहां उन्होंने प्रेरित और धर्माध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। वैटिकन रेडियो को दिए गए अपने साक्षात्कार में लीमा के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल कार्लो कास्तिल्लो ने पेरू वासियों की ओर से अपनी अपार खुशी जाहिर करते हुए कहा कि संत पापा लियो का उन स्थानों में लौट कर आना जहां उन्होंने एक प्रेरित के रूप में अपनी सेवाएं दी, पेरू के लोगों के हृदय को प्रेम से भर देगा। उन्होंने कहा, लीमा के महाधर्माध्यक्ष स्वरूप, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि हम सभी बेसब्री से संत पापा के आने का इंतजार करते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पेरू एक ऐसा देश है जहां कैथोलिक परंपरा बहुत मजबूत है और संत पापा का स्वागत लोगों के द्वारा, पेरू की पूरी आबादी के द्वारा एक सच्चे मित्र स्वरूप किया जाएगा। कार्डिनल कास्तिल्लो ने कहा, यह खबर न केवल हमें अपार खुशी से भरती है, बल्कि हमें अपने विश्वास में बने रहने को मजबूती प्रदान करती है, जिससे हम उनका स्वागत कर सकें और अपने ख्रिस्तीय अनुभव को नई गति दे सकें। उधर आगामी 15 अगस्त को करुणा के कार्य में संलग्न संत इजिदियो समुदाय के द्वारा विभिन्न तबके के लोगों के लिए कई समारोहों का आयोजन किया जाएगा। संत इजिदियो समुदाय ने फेरागोस्तो के लिए अपने कार्यों की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिनमें अकेलेपन और असहनीय गर्मी की मार झेल रहे लोगों के संग गरीबों और सबसे कमजोर लोगों पर अधिक ध्यान देने की बात शामिल की गई है।
इस संदर्भ में संत इजिदियो समुदाय ने रोम और इटली के दूसरे शहरों में कई मिलन और भोज का आयोजन किया है, जिनमें पारंपरिक तरबूज समारोह शामिल है। यह उन लोगों को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया है जो लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। अकेलेपन में रहने वाले बुजुर्ग, बेघर और अप्रवासी गण, जिनमें से कुछ एक मानवीय सहायता पलायन मार्ग से आए और अब पूरी तरह से दूसरों के संग घुल मिल गए हैं, उनमें से कई लोग खाना भी बनाएंगे और परोसेंगे, जिनमें कुछ अफगान भी शामिल हैं, जो आज से ठीक 5 साल पहले 15 अगस्त 2021 को काबुल से पलायन किया था। एकता और मिलन की पार्टियां, दोपहर का भोजन और दूसरे अन्य एकता के कार्यक्रम केवल रोम में ही नहीं बल्कि जेनेवा, मिलान, पादुआ, नेपल्स और इटली के दूसरे शहरों में भी आयोजित किए जाएंगे। उधर एशिया पैसिफिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष रैन पी जेमिनेज ने 10 अगस्त को गहरी समुद्री खनन के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, हम गहरे समुद्री खनन से जुड़े फैसलों की जिम्मेदारी लेने वाले सभी लोगों को सम्मान के साथ प्रोत्साहन देते हैं कि वे समझदारी, पारदर्शिता, विनम्रता और जनहित का ख्याल रखते हुए अपने कार्यों में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक घटनाएं हमें सिखलाती हैं कि जब विज्ञान उन कामों के नतीजों के बारे में अनिश्चित रहता है जिनसे गंभीर या ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, तो समझदारी हमें विनम्रता, समझदारी और प्रार्थना में आगे बढ़ने का आह्वान करती है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब, हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
1: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: कैसरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया

0: के समय आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु येसु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
1: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु येसु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं।
1: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया,

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नबियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर कृपा।

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में सोमवार 10 अगस्त को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। नवीनतम जानकारी के अनुसार मरने वालों की संख्या 265 हो गई है। इस आपदा में 3,494 लोग घायल हुए हैं और 496 लोग अभी भी लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय OCHA और उसके साझेदार सरकार के नेतृत्व में चल रहे राहत और बचाव कार्यों में लगातार सहयोग दे रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में आपात सामग्री, अतिरिक्त कर्मचारी और अन्य संसाधन भेजे जा रहे हैं। OCHA के प्रवक्ता ने कहा कि करीब 5,000 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 387 पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और 61 इमारतें ढह गई हैं, जबकि 550 से अधिक शैक्षणिक संस्थान, 24 स्वास्थ्य केंद्र और 350 से अधिक सामुदायिक केंद्र भी प्रभावित हुए हैं। कोलंबियाई भूवैज्ञानिक सेवा के अनुसार भूकंप का केंद्र करीब 103 किलोमीटर की गहराई पर था। यह इस सदी में देश में दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंप है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने गत बुधवार को कीव पर इस वर्ष हुए सबसे घातक रूसी हमलों की निंदा की। रात भर हुए इन हमलों से 17 लोगों की मौत हो गई और नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय OCHA के अनुसार दोनेस्क में प्रभावित लोगों को आश्रय, मनोसामाजिक सहायता और अन्य राहत सहायता पहुंचाई जा रही है। इस बीच रूस और यूक्रेन ने लंबी दूरी वाली हवाई हमले तेज कर दिए हैं। रूस शहरों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बना रहा है, जबकि यूक्रेन तेल रिफाइनरियों और रसद केंद्रों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन में 1,08,00,000 लोगों की मानवीय सहायता की जरूरत है, जबकि 38,00,000 लोग अब भी देश के भीतर विस्थापित हुए हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूएन के अनुसार जुलाई यूक्रेन में नागरिकों के लिए अप्रैल 2022 के बाद सबसे घातक महीना रहा है। इस वर्ष के पहले 6 महीनों में लगभग 1,400 नागरिकों की मौत और करीब 8,000 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, इन ताज़ा हमलों से आबादी वाले इलाकों पर हमलों में बढ़ोतरी का चिंताजनक रुझान दिखता है। खबरों के अनुसार यूक्रेन में नागरिक हताहतों की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई है और घरों व नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। रूसी संघ में भी ऐसे हमले बढ़ रहे हैं। नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के उपप्रवक्ता फरहान हक के शब्द।
2: अक्टूबर 2023 में हमास के नेतृत्व में इसराइल पर हुए घातक हमलों के बाद शुरू हुए गाजा युद्ध ने एक गंभीर मानवीय संकट पैदा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बावजूद बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। युद्ध विराम के बाद गाजा में इसराइली हमलों में 1,209 लोग मारे गए हैं और 3,943 घायल हुए हैं। कुपोषित माताओं में समय से पहले प्रसव के मामले बढ़ रहे हैं। राहत एजेंसियों ने गाजा में अधिक सहायता पहुंचाने की अपील की है। बच्चों की एक पूरी पीढ़ी शिक्षा और बुनियादी सेवाओं से वंचित है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बावजूद बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। एजेंसी के अनुसार पिछले अक्टूबर में युद्ध विराम के बाद से 300 दिनों में कम से कम 300 बच्चे मारे गए हैं। सैकड़ों बच्चे घायल भी हुए हैं और कई परिवार ध्वस्त इमारतों, मलबे और कचरे के बीच शरण लेने को मजबूर हैं। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि बच्चे कुपोषण, बीमारियों, असुरक्षित पानी और बदहाल साफ सफाई से जूझ रहे हैं। भूखी और थकी माताएं कुपोषित बच्चों को लेकर स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंच रही हैं, जबकि समय से पहले जन्म के मामले भी बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय ने कहा है कि गाजा में आमजन अब भी सुरक्षित नहीं है। घरों, स्कूलों और तिरपाल से बनी अस्थायी कक्षाओं पर भी हमलों की जानकारी मिली है। पश्चिमी तट में भी 80 से अधिक फलस्तीनी स्कूलों को गिराए जाने या उनसे जुड़े आदेशों पर चिंता जताई गई है। सप्ताहांत में गाजा पर इसराइली हमलों में 25 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। अलक्सा अस्पताल के पास चिकित्सा सामग्री भी नष्ट हुई। WFP के अनुसार ऊंची कीमतों के कारण हर 10 में से 4 परिवार बुनियादी खाद्य सामग्री नहीं खरीद पा रहे हैं।
2: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने बताया कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला बुडीबुगियो वायरस का संक्रमण विस्थापित समुदायों तक पहुंच गया है। पूर्वी DR कोंगो में 15 मई को घोषित इबोला प्रकोप अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला प्रकोप है। इतुरी, नॉर्थ कीवू, साउथ कीवू, होत उले और चोपो प्रांतों में इबोला के मामले सामने आए हैं। इन प्रांतों में लगभग 44 लाख आंतरिक रूप से विस्थापित लोग रह रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला प्रकोप तेजी से फैल रहा है और अब विस्थापित समुदायों तक पहुंच गया है। UNHCR के अनुसार इतुरी प्रांत में कम से कम 5 विस्थापन शिविरों में इबोला के मामले सामने आए हैं। अब तक आंतरिक रूप से विस्थापित 19 लोग संक्रमित हुए हैं और 5 की मौत हुई है। WHO ने कहा है कि बुंडी बुग्यो प्रकार के लिए संभावित पहले टीके के परीक्षण शुरू हो गए हैं। साथ ही इतुरी प्रांत में नए उपचार और दवाओं के क्लिनिकल परीक्षण भी चल रहे हैं। बुनिया में 100 बिस्तरों वाला नया इबोला उपचार केंद्र खोला गया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां जांच, निगरानी, उपचार, स्वच्छता सामग्री, खाद्य सहायता और समुदायों तक सही जानकारी पहुंचाने के प्रयास बढ़ा रही हैं।
2: भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा नदी के तट पर 1977 के विनाशकारी दिवी सीमा चक्रवात के दौरान लगभग 31 गांव जलमग्न हो गए थे। प्राकृतिक सुरक्षा कवर न होने के कारण समुद्री पानी भीतर तक पहुंच गया था और हजारों लोगों की जान व आजीविकाएं चली गई। इसके बाद वहां मैनग्रोव वन पनपे। मैनग्रोव वनों की बहाली से घरों और आजीविकाओं के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवर तैयार किया गया। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: भारत के आंध्र प्रदेश में मैनग्रोव वनों की बहाली तटीय समुदायों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच तैयार कर रही है। अब UNDP समर्थित एक्रिक परियोजना के तहत कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में 694 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त दलदली भूमि को बहाल किया गया है। मैनग्रोव तटीय कटाव और तूफानी लहरों का असर कम करते हैं, साथ ही वे केकड़ों, झींगों और मछलियों के लिए प्रजनन स्थल बनकर स्थानीय मछुआरा परिवारों की आजीविका को भी सहारा देते हैं।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें ने आप्रवासियों और शरणार्थियों को समर्पित 112वें दिवस के उपलक्ष में एक संदेश प्रकाशित कर प्रवसन और पलायन के अनुभव में सीधे शामिल नाबालिगों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। कलीसिया द्वारा घोषित आप्रवासियों और शरणार्थियों को समर्पित 112वां दिवस इस वर्ष 27 सितंबर को मनाया जा रहा है। संदेश में संत पापा लिखते हैं कि आप्रवास के वैश्विक आंदोलनों के भीतर नाबालिग सबसे कमजोर समूह हैं। वे ठोस चेहरे हैं जिनके पास अनूठी कहानियां हैं और जो हमारे अंतःकरण को पुकारते हैं। प्रतिवर्ष लाखों बच्चे और किशोर युद्ध, गरीबी, हिंसा, पर्यावरणीय आपदाओं और अन्य त्रासदियों के कारण अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। दुर्भाग्यवश उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस आपदा के आर्थिक, राजनैतिक और सैन्य परिणाम बहुत अधिक हैं। आप्रवासी बच्चों की पीड़ा उनके पुनर्वास से समाप्त नहीं होती। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने माता पिता, भाइयों, बहनों और दोस्तों को खो दिया है और जिन्होंने हिंसा के अकथनीय कृत्यों को देखा है। संत पापा स्मरण दिलाते हैं कि ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ यात्रा करते हुए भी चरम और दर्दनाक परिस्थितियों के संपर्क में आ जाते हैं। वे लंबे समय तक अपने परिवारों से अलग रहते हैं और अलगाव की पीड़ा को सहन करते हुए उनके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सरकारों का आह्वान किया कि वे इन नाबालिगों की दुखद स्थिति को न भुलाएं। 2017 में आप्रवासियों और शरणार्थियों को समर्पित दिवस पर प्रकाशित स्वर्गीय संत पापा फ्रांसिस के संदेश का उल्लेख कर संत पापा लियो ने लिखा, प्रवासी बच्चे तीन तरह से रक्षाहीन हैं। वे बच्चे हैं, वे विदेशी हैं और उनके पास खुद को बचाने का कोई साधन नहीं है। मैं सभी से उन लोगों की मदद करने के लिए कहता हूं जो विभिन्न कारणों से अपनी मातृभूमि से दूर रहने के लिए मजबूर हैं और अपने परिवारों से अलग हो गए हैं। संत पापा लियो आगे लिखते हैं, इतने अंधेरे के बीच एकजुटता के प्रकाश की कमी नहीं है। व्यक्ति, परिवार, नागर संस्थान और कलीसियाई समुदाय दूसरी तरफ से नहीं गुजरना चुनते, बल्कि निस्सहायों की सहायता को आगे आते हैं। हम उन परिवारों की ओर अपने विचार अभिमुख करें जो इन बच्चों को परिवार के चूल्हे की गर्मी बहाल करने के लिए अपने घरों के दरवाजे खोलते हैं। शिक्षक जो स्वागत केंद्रों में सेवा करते हैं, स्वयं सेवक और राहत कर्मी जो प्रतिदिन प्रवसन मार्गों और हमारे शहरों में इन बच्चों के अदृश्य घावों को ठीक करने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। वे इस प्रतिबद्धता की गवाही देते हैं कि प्रेम उदासीनता पर विजय प्राप्त कर सकता है। संत पापा ने सभी को आमंत्रित किया कि वे आप्रवासियों और शरणार्थियों तथा विशेष रूप से उनके बच्चों के लिए नए शैक्षिक और आध्यात्मिक मार्ग खोजें तथा मानव प्रतिष्ठा के अनुकूल उन्हें पुनर्वास का पूरा मौका प्रदान करें। वैटिकन स्थित दिव्य भक्ति और संस्कार संबंधी परम धर्म पीठीय विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल आर्थर रोच को एक पत्र प्रेषित कर संत पापा लियो ने अमेरिका के ओरेगन में माउंट आंगेल मठ में धर्म विधिक प्रशिक्षण पर एकत्र समस्त धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और अन्य प्रतिभागियों के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित की। संत पापा ने लिखा, पूजन पद्धति और धर्म विधिक प्रार्थनाओं तथा आध्यात्मिक साधना पर प्रकाशित अपने प्रेरित पत्र देजिदेरियो देजिदेरावी में संत पापा फ्रांसिस ने इस तथ्य पर बल दिया है कि समस्त विश्व में व्याप्त कलीसिया के गिरजाघरों की पूजन पद्धति और धर्म विधिक प्रार्थनाओं तथा आध्यात्मिक साधना को नवीन स्फूर्ति से अनुप्राणित करने के लिए पुरोहितों और लोकधर्मी विश्वासियों को ध्यानपूर्वक और निरंतर प्रशिक्षण देने की जरूरत है। तदुपरांत उन्होंने हमें याद दिलाया कि इस तरह का प्रशिक्षण कुछ विशेषज्ञों के लिए विशेषज्ञता या प्रवीणता हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह समस्त ईश प्रजा की आंतरिक प्रकृति है। संत पापा ने लिखा कि इसलिए मैं आपको यीशु मसीह के शरीर में हर स्तर पर पूजन पद्धति और आराधना विधि की तैयारी के लिए ठोस रास्ते खोजने के लिए बढ़ावा देता हूँ। साथ ही हमें उन लोगों की तैयारी में प्राथमिकता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जिन्हें पवित्र आदेशों के संस्कार के आधार पर मिस्टागॉग अर्थात
रहस्य दीक्षा पाने वाले विश्वासी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे पहला व्यावहारिक अभ्यास रविवारीय ख्रीस्तियागों के लिए लोगों को एकत्र करना होता है। ये समारोह धर्म विधिक वर्ष की लय पर आधारित हैं, जिसके केंद्र में है पास्काई रहस्य। संत पापा ने आगे लिखा कि इस तरह सही शिक्षा और श्रद्धापूर्वक आराधना अर्चना से कैथलिक विश्वासी धर्म विधिक प्रार्थनाओं के लिए तत्पर रहेंगे। इसके अलावा पवित्र रहस्यों के सम्मानजनक और गरिमापूर्ण समारोह को बढ़ावा देने के लिए हमें अनुमोदित पाठों और निर्देशों के प्रति वफादारी की जरूरत पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि यह सम्मान ईश्वर के प्रति खुलेपन और विश्वास की आंतरिक मनोवृत्ति से प्रस्फुटित होवे तथा कलीसियाई सहभागिता के प्रति विनम्रता और सत्यनिष्ठा दर्शाए। म्यांमार में येसु धर्म समाज के प्रांताध्यक्ष फादर गिरीश संत्यागो कहते हैं कि वासो बौद्ध काल संघर्ष से जूझ रहे म्यांमार में ख्रिस्तानुयायियों और बौद्ध धर्मानुयायियों को संवाद, दया और पुनर्मिलन की ओर एक साझा रास्ता दिखा सकता है। बौद्ध वासा गहन ध्यान, आध्यात्मिक सोच और भिक्षुओं को प्रसाद चढ़ाने की अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। बारिश के मौसम में 3 महीने तक चलने वाला वासो आम तौर पर जून या जुलाई माह में पूर्णिमा के दिन शुरू होता है। फादर गिरीश ने कहा कि लगातार राजनीतिक अस्थिरता और मानवीय चुनौतियों का सामना कर रहे म्यांमार में बौद्ध धर्मानुयायियों का वासा काल अंतरधार्मिक मुलाकातों और साझा शांति निर्माण के लिए एक सार्थक पुल बन सकता है। और रोम स्थित संत इजिदियो समुदाय ने युद्ध और संघर्षों से घिरे विश्व में इटली के कई शहरों में बेघर लोगों, शरणार्थियों और वयोवृद्धों के लिए 15 अगस्त को मां मरियम के स्वर्गोत्थान महापर्व के दिन पारंपरिक मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की है। संत इजिदियो लोकोपकारी समुदाय के लिए 15 अगस्त के दिन कई ऐसी पहलें शुरू की गई हैं जो इन दिनों के अकेलेपन और असहनीय गर्मी सहने वालों तथा निर्धनों, बेघर लोगों और सबसे कमजोर लोगों पर अधिक ध्यान देने की अपील करेंगी। संत इजिदियो समुदाय की विज्ञप्ति के अनुसार ऐसे विश्व में जहां सबसे कमजोर लोगों को नजरअंदाज करने का खतरा बना हुआ है, यह पहल युद्ध और संघर्ष के समय में शांति और एकजुटता का संदेश प्रदान करेगी। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में सोमवार 10 अगस्त को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। नवीनतम जानकारी के अनुसार मरने वालों की संख्या 265 हो गई है। इस आपदा में 3,494 लोग घायल हुए हैं और 496 लोग अभी भी लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय OCHA और उसके साझेदार सरकार के नेतृत्व में चल रहे राहत और बचाव कार्यों में लगातार सहयोग दे रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में आपात सामग्री, अतिरिक्त कर्मचारी और अन्य संसाधन भेजे जा रहे हैं। OCHA के प्रवक्ता ने कहा कि करीब 5,000 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 387 पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और 61 इमारतें ढह गई हैं, जबकि 550 से अधिक शैक्षणिक संस्थान, 24 स्वास्थ्य केंद्र और 350 से अधिक सामुदायिक केंद्र भी प्रभावित हुए हैं। कोलंबियाई भूवैज्ञानिक सेवा के अनुसार भूकंप का केंद्र करीब 103 किलोमीटर की गहराई पर था। यह इस सदी में देश में दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंप है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने गत बुधवार को कीव पर इस वर्ष हुए सबसे घातक रूसी हमलों की निंदा की। रात भर हुए इन हमलों से 17 लोगों की मौत हो गई और नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय OCHA के अनुसार डोनेस्क में प्रभावित लोगों को आश्रय, मनोसामाजिक सहायता और अन्य राहत सहायता पहुंचाई जा रही है। इस बीच रूस और यूक्रेन ने लंबी दूरी वाली हवाई हमले तेज कर दिए हैं। रूस शहरों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बना रहा है, जबकि यूक्रेन तेल रिफाइनरियों और रसद केंद्रों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन में 1,08,00,000 लोगों की मानवीय सहायता की जरूरत है, जबकि 38,00,000 लोग अब भी देश के भीतर विस्थापित हुए हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूएन के अनुसार जुलाई यूक्रेन में नागरिकों के लिए अप्रैल 2022 के बाद सबसे घातक महीना रहा है। इस वर्ष के पहले 6 महीनों में लगभग 1,400 नागरिकों की मौत और करीब 8,000 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, इन ताजा हमलों से आबादी वाले इलाकों पर हमलों में बढ़ोतरी का चिंताजनक रुझान दिखता है। खबरों के अनुसार यूक्रेन में नागरिक हताहतों की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई है और घरों व नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। रूसी संघ में भी ऐसे हमले बढ़ रहे हैं। नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक के शब्द।
2: अक्टूबर 2023 में हमास के नेतृत्व में इसराइल पर हुए घातक हमलों के बाद शुरू हुए गाजा युद्ध ने एक गंभीर मानवीय संकट पैदा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बावजूद बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। युद्ध विराम के बाद गाजा में इसराइली हमलों में 1,209 लोग मारे गए हैं और 3,943 घायल हुए हैं। कुपोषित माताओं में समय से पहले प्रसव के मामले बढ़ रहे हैं। राहत एजेंसियों ने गाजा में अधिक सहायता पहुंचाने की अपील की है। बच्चों की एक पूरी पीढ़ी शिक्षा और बुनियादी सेवाओं से वंचित है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बावजूद बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। एजेंसी के अनुसार पिछले अक्टूबर में युद्ध विराम के बाद से 300 दिनों में कम से कम 300 बच्चे मारे गए हैं। सैकड़ों बच्चे घायल भी हुए हैं और कई परिवार ध्वस्त इमारतों, मलबे और कचरे के बीच शरण लेने को मजबूर हैं। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि बच्चे कुपोषण, बीमारियों, असुरक्षित पानी और बदहाल साफ सफाई से जूझ रहे हैं। भूखी और थकी माताएं कुपोषित बच्चों को लेकर स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंच रही हैं, जबकि समय से पहले जन्म के मामले भी बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय ने कहा है कि गाजा में आमजन अब भी सुरक्षित नहीं है। घरों, स्कूलों और तिरपाल से बनी अस्थायी कक्षाओं पर भी हमलों की जानकारी मिली है। पश्चिमी तट में भी 80 से अधिक फलस्तीनी स्कूलों को गिराए जाने या उनसे जुड़े आदेशों पर चिंता जताई गई है। सप्ताहांत में गाजा पर इसराइली हमलों में 25 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। अलक्सा अस्पताल के पास चिकित्सा सामग्री भी नष्ट हुई। WFP के अनुसार ऊंची कीमतों के कारण हर 10 में से 4 परिवार बुनियादी खाद्य सामग्री नहीं खरीद पा रहे हैं।
2: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने बताया कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला बुडीबुगियो वायरस का संक्रमण विस्थापित समुदायों तक पहुंच गया है। पूर्वी DR कोंगो में 15 मई को घोषित इबोला प्रकोप अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला प्रकोप है। इतुरी, नॉर्थ कीवू, साउथ कीवू, होत उले और चोपो प्रांतों में इबोला के मामले सामने आए हैं। इन प्रांतों में लगभग 44 लाख आंतरिक रूप से विस्थापित लोग रह रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला प्रकोप तेजी से फैल रहा है और अब विस्थापित समुदायों तक पहुंच गया है। UNHCR के अनुसार इतुरी प्रांत में कम से कम 5 विस्थापन शिविरों में इबोला के मामले सामने आए हैं। अब तक आंतरिक रूप से विस्थापित 19 लोग संक्रमित हुए हैं और 5 की मौत हुई है। WHO ने कहा है कि बुंडीबुगियो प्रकार के लिए संभावित पहले टीके के परीक्षण शुरू हो गए हैं। साथ ही इतुरी प्रांत में नए उपचार और दवाओं के क्लिनिकल परीक्षण भी चल रहे हैं। बुनिया में 100 बिस्तरों वाला नया इबोला उपचार केंद्र खोला गया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां जांच, निगरानी, उपचार, स्वच्छता सामग्री, खाद्य सहायता और समुदायों तक सही जानकारी पहुंचाने के प्रयास बढ़ा रही हैं।
2: भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा नदी के तट पर 1977 के विनाशकारी दिवी सीमा चक्रवात के दौरान लगभग 31 गांव जलमग्न हो गए थे। प्राकृतिक सुरक्षा कवर न होने के कारण समुद्री पानी भीतर तक पहुंच गया था और हजारों लोगों की जान व आजीविकाएं चली गई। इसके बाद वहां मैनग्रोव वन पनपे। मैनग्रोव वनों की बहाली से घरों और आजीविकाओं के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवर तैयार किया गया। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: भारत के आंध्र प्रदेश में मैनग्रोव वनों की बहाली तटीय समुदायों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच तैयार कर रही है। अब UNDP समर्थित एक्रिक परियोजना के तहत कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में 694 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त दलदली भूमि को बहाल किया गया है। मैनग्रोव तटीय कटाव और तूफानी लहरों का असर कम करते हैं, साथ ही वे केकड़ों, झींगों और मछलियों के लिए प्रजनन स्थल बनकर स्थानीय मछुआरा परिवारों की आजीविका को भी सहारा देते हैं।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो चौदवे ने आप्रवासियों और शरणार्थियों को समर्पित 112वें दिवस के उपलक्ष में एक संदेश प्रकाशित कर प्रवसन और पलायन के अनुभव में सीधे शामिल नाबालिगों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। कलीसिया द्वारा घोषित आप्रवासियों और शरणार्थियों को समर्पित 112वां दिवस इस वर्ष 27 सितंबर को मनाया जा रहा है। संदेश में संत पापा लिखते हैं कि आप्रवास के वैश्विक आंदोलनों के भीतर नाबालिग सबसे कमजोर समूह हैं। वे ठोस चेहरे हैं जिनके पास अनूठी कहानियां हैं और जो हमारे अंतःकरण को पुकारते हैं। प्रतिवर्ष लाखों बच्चे और किशोर युद्ध, गरीबी, हिंसा, पर्यावरणीय आपदाओं और अन्य त्रासदियों के कारण अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। दुर्भाग्यवश उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस आपदा के आर्थिक, राजनैतिक और सैन्य परिणाम बहुत अधिक हैं। आप्रवासी बच्चों की पीड़ा उनके पुनर्वास से समाप्त नहीं होती। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने माता पिता, भाइयों, बहनों और दोस्तों को खो दिया है और जिन्होंने हिंसा के अकथनीय कृत्यों को देखा है। संत पापा स्मरण दिलाते हैं कि ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ यात्रा करते हुए भी चरम और दर्दनाक परिस्थितियों के संपर्क में आ जाते हैं। वे लंबे समय तक अपने परिवारों से अलग रहते हैं और अलगाव की पीड़ा को सहन करते हुए उनके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सरकारों का आह्वान किया कि वे इन नाबालिगों की दुखद स्थिति को न भुलाएं। 2017 में आप्रवासियों और शरणार्थियों को समर्पित दिवस पर प्रकाशित स्वर्गीय संत पापा फ्रांसिस के संदेश का उल्लेख कर संत पापा लियो ने लिखा, प्रवासी बच्चे तीन तरह से रक्षाहीन हैं। वे बच्चे हैं, वे विदेशी हैं और उनके पास खुद को बचाने का कोई साधन नहीं है। मैं सभी से उन लोगों की मदद करने के लिए कहता हूँ जो विभिन्न कारणों से अपनी मातृभूमि से दूर रहने के लिए मजबूर हैं और अपने परिवारों से अलग हो गए हैं। संत पापा लियो आगे लिखते हैं, इतने अंधेरे के बीच एकजुटता के प्रकाश की कमी नहीं है। व्यक्ति, परिवार, नागर संस्थान और कलीसियाई समुदाय दूसरी तरफ से नहीं गुजरना चुनते, बल्कि निस्सहायों की सहायता को आगे आते हैं। हम उन परिवारों की ओर अपने विचार अभिमुख करें जो इन बच्चों को परिवार के चूल्हे की गर्मी बहाल करने के लिए अपने घरों के दरवाजे खोलते हैं। शिक्षक जो स्वागत केंद्रों में सेवा करते हैं, स्वयं सेवक और राहत कर्मी जो प्रतिदिन प्रवसन मार्गों और हमारे शहरों में इन बच्चों के अदृश्य घावों को ठीक करने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। वे इस प्रतिबद्धता की गवाही देते हैं कि प्रेम उदासीनता पर विजय प्राप्त कर सकता है। संत पापा ने सभी को आमंत्रित किया कि वे आप्रवासियों और शरणार्थियों तथा विशेष रूप से उनके बच्चों के लिए नए शैक्षिक और आध्यात्मिक मार्ग खोजें तथा मानव प्रतिष्ठा के अनुकूल उन्हें पुनर्वास का पूरा मौका प्रदान करें। वैटिकन स्थित दिव्य भक्ति और संस्कार संबंधी परम धर्म पीठीय विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल आर्थर रोच को एक पत्र प्रेषित कर संत पापा लियो ने अमेरिका के ओरेगन में माउंट आंगेल मठ में धर्म विधिक प्रशिक्षण पर एकत्र समस्त धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और अन्य प्रतिभागियों के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित की। संत पापा ने लिखा, पूजन पद्धति और धर्म विधिक प्रार्थनाओं तथा आध्यात्मिक साधना पर प्रकाशित अपने प्रेरित पत्र देजिदेरियो देजिदेरावी में संत पापा फ्रांसिस ने इस तथ्य पर बल दिया है कि समस्त विश्व में व्याप्त कलीसिया के गिरजाघरों की पूजन पद्धति और धर्म विधिक प्रार्थनाओं तथा आध्यात्मिक साधना को नवीन स्फूर्ति से अनुप्राणित करने के

ये पुरोहितों और लोक धर्मी विश्वासियों को ध्यानपूर्वक और निरंतर प्रशिक्षण देने की जरूरत है। तदुपरांत उन्होंने हमें याद दिलाया कि इस तरह का प्रशिक्षण कुछ विशेषज्ञों के लिए विशेषज्ञता या प्रवीणता हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह समस्त ईश प्रजा की आंतरिक प्रकृति है। संत पापा ने लिखा कि इसलिए मैं आपको यीशु मसीह के शरीर में हर स्तर पर पूजन पद्धति और आराधना विधि की तैयारी के लिए ठोस रास्ते खोजने के लिए बढ़ावा देता हूँ। साथ ही हमें उन लोगों की तैयारी में प्राथमिकता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जिन्हें पवित्र आदेशों के संस्कार के आधार पर मिस्टर गॉग अर्थात रहस्य दीक्षा पाने वाले विश्वासी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे पहला व्यवहारिक अभ्यास रविवारीय ख्रीस्तियागों के लिए लोगों को एकत्र करना होता है। ये समारोह धर्मविधिक वर्ष की लय पर आधारित हैं, जिसके केंद्र में है पास्काई रहस्य। संत पापा ने आगे लिखा कि इस तरह सही शिक्षा और श्रद्धापूर्वक आराधना अर्चना से कैथलिक विश्वासी धर्मविधिक प्रार्थनाओं के लिए तत्पर रहेंगे। इसके अलावा पवित्र रहस्यों के सम्मानजनक और गरिमापूर्ण समारोह को बढ़ावा देने के लिए हमें अनुमोदित पाठों और निर्देशों के प्रति वफादारी की जरूरत पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि यह सम्मान ईश्वर के प्रति खुलेपन और विश्वास की आंतरिक मनोवृत्ति से प्रस्फुटित होवे तथा कलीसियाई सहभागिता के प्रति विनम्रता और सत्यनिष्ठा दर्शाए। म्यांमार में येसु धर्म समाज के प्रांताध्यक्ष फादर गिरीश संत्यागो कहते हैं कि वासो बौद्ध काल संघर्ष से जूझ रहे म्यांमार में ख्रिस्तानुयायियों और बौद्ध धर्मानुयायियों को संवाद, दया और पुनर्मिलन की ओर एक साझा रास्ता दिखा सकता है। बौद्ध वासा गहन ध्यान, आध्यात्मिक सोच और भिक्षुओं को प्रसाद चढ़ाने की अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। बारिश के मौसम में 3 महीने तक चलने वाला वासो आम तौर पर जून या जुलाई माह में पूर्णिमा के दिन शुरू होता है। फादर गिरीश ने कहा कि लगातार राजनीतिक अस्थिरता और मानवीय चुनौतियों का सामना कर रहे म्यांमार में बौद्ध धर्मानुयायियों का वासा काल अंतरधार्मिक मुलाकातों और साझा शांति निर्माण के लिए एक सार्थक पुल बन सकता है। और रोम स्थित संत इजिदियो समुदाय ने युद्ध और संघर्षों से घिरे विश्व में इटली के कई शहरों में बेघर लोगों, शरणार्थियों और वयोवृद्धों के लिए 15 अगस्त को मां मरियम के स्वर्गोत्थान महापर्व के दिन पारंपरिक मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की है। संत इजिदियो लोकोपकारी समुदाय के लिए 15 अगस्त के दिन कई ऐसी पहलें शुरू की गई हैं जो इन दिनों के अकेलेपन और असहनीय गर्मी सहने वालों तथा निर्धनों, बेघर लोगों और सबसे कमजोर लोगों पर अधिक ध्यान देने की अपील करेंगी। संत इजिदियो समुदाय की विज्ञप्ति के अनुसार ऐसे विश्व में जहां सबसे कमजोर लोगों को नजरअंदाज करने का खतरा बना हुआ है, यह पहल युद्ध और संघर्ष के समय में शांति और एकजुटता का संदेश प्रदान करेगी। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।